नाम मिला त्रिपतासा, मिल संगत गुण परगास। जिन हार हार हर रस नाम न पाया, ते पागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सतसंगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित्त वह उदम। जा आर हर जियो परिया, सैल पत्थर मैं जंतु पाए। ताका रिजक आगा कर तरिया, मेरे माधो जी सत संगत मिले सुतरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाओ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोय न किस की धरिया। सिर से रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भव करिया। ऊडे ऊड आवा सह कोसा, तिस पाछा बचरे श्रिया। तिन कवन खलावा कवन चुगावा, मन में सिमरन करिया। साबन दान दा सष्ट सिधान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल सदबल जाइया, तेरा अंत ना पारा भरिया। राग आसा महला चौथा सो पुरख, एको अंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमे पारा। सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सचे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दा तारा। हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारन हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जानत विचारा। तू घट घटे अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाना। एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज वडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हौ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुरबाना। हर त्यावह तुद जी, से जन जुगमय सुख वासी। से मुकत भय जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनके अनेक अनंता। तेरी अनक कर हर पूजा जी, तब तापह जपह बेअंता। तेरे अनेक पढ़ बहु सिमरत शास्त्र जी। कर क्रिया खाट कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी। जो पावह मेरे हर भगवंता, तू आदि पुरख अपरंपर करता जी। तुद जेवड अवर ना कोई, तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी। तू निश्चल करता सोई, तुद आपे पावह सोई वरता जी। तू आपे करह सो होई, तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी। तुद आपे सृज सब गोई, जन नानक गुण गावा करते के जी। जो सबसा काजा नोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देहे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे,
ਤੁਝ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਤੇਰਾ ਖੇਲ, ਵਿਜੋਗ ਮਿਲ ਵਿਛੜਿਆ,

अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षण उपजायो आद अंत एका अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जन आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दियो सतरन को पालमो पद कियो

दुख तेरा खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दले हो उबारी, सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबा, बहुपेद कह हम एक न जान्यो। श्री

गुरु साहिब कृपा करनगे, इन्नियां कीर्तनियां सवावां प्रवान करन। आओ बहुत ही सत्कार जो ज्ञानी गुरशन सिंह जी आप जी नूं कथा विचारां द्वारा निहाल करनगे इत्थे ही।

0: सतगुर बख्श छोड़ी पाओ सेवा ते सिमरन दी सतगुर बख्श छोड़ी पाओ सेवा ते सिमरन दी सतगुर बख्श छोड़ी पाओ
1: दीन दुनी दे मालक सर्वरे कायनात रूहानियत दे सागर प्रीतां दे पहरेदार शब्द गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार अंदर जुड़ बैठे सत संगी जनो आओ अपनियां रसनावां नूं पवित्र करिए मन नूं चढ़दियां कला विच लिया के गज वज के फतेह बुलाइए आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। सतगुरां दी अपार बख्शिश होई अमृत वेले तो लैके सतगुरु तख्त दे उत्ते सुभायमान ने और भागां वालियां संगतां सतगुरां दे दर्शन ददारे करके शब्द कीर्तन सुन के कथा विचारां सुन के अपना जीवन सफला करके जा रहे हो सतगुरु सब दी हाजरी प्रवान कर। सेवा ते सिमरन गुरु प्यारिओ दो सिख धर्म दे अहम अंग हन। सेवा ते सिमरन, सेवा भी जरूरी है सिमरन भी जरूरी है। हुण जे कल्ली सेवा आपां आख दईए ना बई असी लंगरां दे विच सेवा करदे असी वरतार रहे हां असी लंगर बना रहे हां मुबारक बहुत वधिया सेवा है। लंगर बनाउणा बहुत वड्डी सेवा है। लंगर छकाउणा भी सेवा है, लंगर छकणा भी सेवा है। पर गुरु प्यारे वो कल्ले लंगर दे विचो सेवा करके मुड़ गए ऐ दरबार दे विच आके गुरु के शब्द नाल ना जुड़े गुरु महाराज जी ने सानू की बख्शिश कीती है साडे उत्ते जे वो सरवण ना कीता ते उस सेवा दा कल्ली दा कीती हुई सेवा हंकार पैदा कर सकती है वो चो होमे आ सकती है। वेखो मैं कल्ला ही किन्नी सेवा करी जाना, मैं 200 बंदे नूं कल्ला ही रोटी खिला देना, मैं 400 बंदे दे कल्ले असी प्रसादे पका देनियां 5-7 दाणियां, मैं कल्ला ही सब्जी बना देना। ये सेवा है, भावे सेवा है और ये सेवा कई बार हंकार पैदा कर दी जिन्ना चर असी गुरु के शब्द दे नाल नहीं जुड़ते। तो प्यार वाले इसे कई बार इदां दीआं घटनावां इदां दीआं साखियां साडे समाज दे विच साडे जग दे अंदर जोड़ दित्तियां गईआं पर कल्ली सेवा नूं पहल दित्ती गई है भी गुरु घर दे विच आउण दी कोई जरूरत नहीं है। पढ़िया होवेगा तुसी इतिहास असीं आपां सांझा भी कीता पिछले दिनां दे विच बाबा अमरदास जी महाराज 60-62 साल दी उम्र है जदों खडूर साहिब जांदे ने और साडे ज्यादा बुलारियां ने इत्थों तक कि उहनां नूं 12-13 साल गागरी ढोंदे दिखाई जांदे वी गागरी ढोई है पानी लियाई गए बस नड़ाई गए गुरु साहब नूं। गुरु प्यारे ओ कल्ले पानी नड़ाउण दे नाल जां पानी पलाउण दे नाल ओह सेवा नहीं सी होणी। इस रब्बी तख्त दे वारस कल्ले पानी ढोणा नहीं सी बन सकदे जिन्ना चिर उहनां दे हिरदे च शब्द नहीं सी वसिया। उहनां ने सेवा भी कीती, उहनां ने शब्द दी कमाई भी कीती है। रूहानियत ज्ञान प्राप्त करन वास्ते

इहा सुख मांगा मुखकार संतन की तूरे अंतर जामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इहा सुख मांगा मुखकार संतन की तूरे वाहिगुरु जी का खालसा।

राम जे पाया राम ते पमै न बार बार रहाऊ। झूठा जग डहके कना दिन दोए बर्तन की आस। राम उदक जे जन पिया ते बौर न पई प्यास। गुर प्रसाद जे बुझे आया सा ते पया निरास। सब सच नदरी आया जो आत्म पया उदास। राम नाम रस चखिया हर नामा हर तार। कहो कबीर कंचन पया भ्रम गया समुंदर पार। उदक समुंद सरल की साखिया नदी तरंग समावेंगे। सुन्ने सुन मिलिया समदर्शी पवन रूप होए जावेंगे।

जब चुके पंच तात की रचना, ऐसे परम चुकावेंगे। दर्शन छोड़ पे समदर्शी, एको नाम ते आवेंगे। जित हम लाए तित ही लागे, तैसे कर्म कमावेंगे। हर जी कृपा करे जो अपने, तो गुरु के शब्द समावेंगे। जीवत मरो मरो फुन जीवो, पुनरप जन्म ना होई। कहो कबीर जो नाम समाने, सुन रे आलिव सोई। जो तुम मोको दूर करता हो, तो तुम मुक्त बताओ। एक अनेक होए रे हो सगल में, अब कैसे परमावो।

तारण तरण तबे लग कहिए, जब लग तत ना जानिया। अब तो बिमल भय कट ही मैं, कह कबीर मन मानिया। जिन गाढ़ कोट किए कंचन के, छोड़ गया सो रावण। काहे की जित है मन भावन, जब जम आए केस ते पकड़े। तें हर को नाम छडावन रहा, काल अकाल खसम का कीना। ए परपंच बंधावन, कह कबीर ते अंते मुकते। जिन हृदय राम रसायन, देही कामा जियो तर महतो। बसे पंच किरसाना, नैनू नकटू श्रवणु रास पत। इंद्री कहे आना माना, बाबा अब ना बसोए गाँव। करी करी का लिखा मांगे, कायत चेतु नाओ रहाओ। धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी। पंच किरसाण वा भाग गए, लै बांधे जियो दरबारी। कह कबीर सुनो रे संतो, खेद ही करो न बेरा। अब की बार बख्श बंदे को, बहुर न पाओ जल फेरा। राग मारू बाणी कबीर जियो की, को अंकार सत गुर प्रसाद। अन पाओ किने ना देखिया, बैरागी अड़े। बिन पै अन पो होए बना हम्बे। शाह हदूर देखे ता पाओ पवे, बैरागी अड़े। हुक्मे बुझे ता निरपो होए बना हम्बे। हार पाखंड ना कीजे, बैरागी अड़े। पाखंड रत्ता सब लोक बना हम्बे। तृष्णा पास ना छोड़ई, बैरागी अड़े। ममता जाड़िया पिंड बना हम्बे। चिंता जाल तन जाड़िया, बैरागी अड़े। जे मन मृतक होए बना हम्बे। सतगुर बिन बैराग ना होवई, बैरागी अड़े। जे लोचे सब कोए बना हम्बे। करम होवे सतगुर मिले, बैरागी अड़े। सहजे पावे सोए बना हम्बे।

राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो पाओ बिदर को देखियो, ओह गरीब मैं पावे रहाओ। हस्ती देख परम ते भूला, श्री भगवान ना जानिया, तुमरो दूध पितर को पानो, अमृत कर मैं मानिया। खीर समान साग मैं पाया, गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकुर आनंद बिनोदी, जात ना काऊ की मानी। श्लोक कबीर गगन दमामा बाजे, ओ परयो निशान काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूझन को दाओ। सूरा

कबीर का शब्द राग मारू बाणी नाम देव जी की एक ओंकार सत गुर प्रसाद। चार मुकत चारे सिद्ध मिलके दूला प्रभु की शरण परयो। मुकत भयो चौहू जुग जानयो जस कीर्त माता शतर तरयो। राजा राम जपत को ना तरयो कुरे उपदेश साध की संगत भगत भगत ता को नाम परयो रहा। शंख चकर माला तिलक विराजत देख प्रताप जम डरेयो। नृप पय राम बल गर्जित जन्म मरण संताप हरेयो। अम्बरी को दियो अपै पद अपराज भभीखण अधिक करेयो। नौनद ठाकुर दई सुदामै त्रु अटल अजहू ना टरेयो। भगत हेत मार्यो हरनाक्ष नरसिंह रूप होए दे तरयो। नामा कहे भगत बस केसव अजहू बल के द्वार करो मारू कबीर जियो। दीन बिसार्यो रे दीवाने दीन बिसार्यो रे पेट भर्यो पशुआ ज्यो सोयो मनुख जन्म है हार्यो रहा। साध संगत कब होने कीने रचियो तंदे झूठ स्वाण सुकर बायस जिमै भटकत चालियो ऊठ।

कामे क्रोधी चातुरी बाजी कर बेकाम, निंदा करते जन्म सिरानो कबहू न सिमरियो राम। कह कबीर चेतै नहीं मूर्ख मुगत कवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार।

निश्चल चतर सुजान विधाता चंचल जगत सबाया ज्ञान ध्यान गुण अंक समाने प्रपाणिता पाया।

मन मोह चुकाया जां सपाया कर कृपा कर आओ बोते वेस करी फिर बाजों महली लहा न थाओ।

बेदास महारुति थी वार पड़े, कड़ी मूर्त पल साचे आए सहज मिले। परमले प्यारे कार्य सारे, करता सब जाने, जिन सिंगारित से प्यारी मेल पया रंग माने।

तिन कर राखियड़ा जोवंतन जाके राम। घर पूछ जागे नाम लागे तिना रहन सोहेलिया। गुरु शब्द कमावे जन्म नयावे तिना हर प्रबेलिया।

सतगुर जे वरदाता को नहीं सब फुने लोक सभाया सतगुरु मिले सच पाया जिन विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया।

जोगी सुन त्यों मन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का आकार सत्याम संतोख उपजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सोकरे संसार चोरा जा रहा कुड़िया रखा रब्बा विकार।

0: नानक जिन तू पाए कै संभाले सबना।
1: जिन करता करना किया चिंता भी करनी ता, सो करता चिंता करे जिन पाए जग। तिस जो हारी स्वस्थ तिस

0: वे शून्या अंधी ना जाने पिर नाले घोर प्रसादी साचा पिर मिले अंतर सदा संभाले पेरे अंतर संभाले सदा है नाले मान मुख जाता दूरे ए तान रुले रुलाया काम ना आया जिन खसम ना जाता हदूरे नानक सा तन मिले मिलाए तेरे अंतर सदा संभाले एक रोवे पिरे विशुनिया अंधी ना जाने पिर है नाले नानक सा तन मिले मिलाए तेरे अंतर सदा संभाले एक रोवे पिरे विशुनिया अंधी ना जाने पिर है नाले वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे गुरु प्यारे गुरु सवारे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों वडभागे हां जिथे आप जिया ने अमृत वेले दे पावन सजे हुए दरबार दीआं हाजरियां भरदिआं लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ दे राहीं पावन बाणी दा आनंद माणिया है। आसा की वार दी पावन बाणी दे शब्द कीर्तन आप संगतां नूं श्रवण करवा रहे सन सत्कारयोग भाई परमजीत सिंह जी लुधियाणे वाले। यह जत्था कल शाम ही साडे पास पहुंचा है। इन्हां नूं आप समूह संगतां वल्लों जीओ आया आखदे आ। आने वाला समा आप संगतां दे गुरु शब्द कीर्तन द्वारा सेवा करनगे। आप संगतां ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित हाजरियां भर के श्रवण करन दी कृपालता करनी जी। सतगुरां ने अरदास बेनती तो उपरंत अमृत वेले सिंघासना ते विराजमान हो करके जो पावन मुख वाक की दात बख्शिश कीती है पवित्र मुख वाक की कथा आप संगतां नूं श्रवण करवाउणगे सत्कारयोग भाई गुरशरण सिंह जी चीमा। आओ तिन्हां पासों सतगुरां दे पवित्र मुख वाक की कथा विचार श्रवण करिए जी। भुल्लां चुक्कां दी खिमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
1: सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ तू समर्थ अकथ अगोचर जियो पिंड तेरी रास

रहाउ। और मुए क्या रुइये जो आपा थिर ना रहाए, जो पजे सो बिनस है दुख कर रोवे बलाई।

को जुगा टल, चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर, शब्द गुरु बाणी के बोहे थमरत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह, सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तो ही सज्जे दवाना दियां हाजरियां भर रहे, सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां दी बड़ी अपार बख्शिश रहमत हुई है आप सब।

0: जय मात पिता सतमीत न पाई मनुआ नाम तेरे संग सहाई।
1: जय मां प्यान दूत जम दले तै केवल नाम संग तेरे चले।
0: जय मुश्किल होवे

0: लाख करोरी बंद न परे हर का नाम जपत निस्तरे
1: अनक माया रंग तिक न बुझावे हर का नाम जपत अगावे
0: जह मार्गे हो जात केला ते हर नाम संगोत सुहेला
1: ऐसा नाम मन सदा ध्याइए नानक गुरमुख परम गत पाइए
0: छूटत नहीं कोर रखवाही नाम जपत तह पार पराही
1: अनक प्रगंजय है सिंगारे हर का नाम तत्काल उधारे
0: अनेक जोन जन में मर जाम नाम जपत पावे विश्राम
1: ओ मैला मल कबू न तो वे हर का नाम कोट पाप को वे
0: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साज के संग
1: ये मार के गण जाए न कोसा हर का नाम असंतोषा
0: जय पेंडे महान जगवारा हर का नाम संगी

0: तुम पर श्याम
1: भक्त
0: जना की बर्तन नाम संत जना के मन विश्राम
1: नाम दास की ओट हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात हर हरि औखद साज कमात
1: हर जन के हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नौ दान
0: मन तन रंग रते रंगे के नानक जन के बिरत विवेक
1: हर का नाम जन को मुक्त जुक्त हर के नाम जन को तृप्त भुक्त
0: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जप्त का परे न भंग
1: हर का नाम जन की वड़ियाई हर के नाम जन शोभा पाई
0: हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जप्त का स्नेह वियोग।

0: रमैया के गुण के तपरानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी
1: जंतु सास सवार सिंगारिया गर्भ गण में जिने उभारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध है पार जोवन भोजन सकसूद गुण गुण कछु न बूझे बक्स ले हो तो नानक सीजे
1: प्रसाद ऊपर सुख बसे सुत पर आदमी बनता संघर्ष
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला सुखदाई पवन पाव को मुल्ला
1: जय प्रसाद भोगे सब रसा सगल सामग्री सन साथ बसा
0: दीने हस्त पाप करने तरसना तिसे त्याग वर संग रचना
1: ऐसे दुख मणि अंत व्यापे नानक काढ लियो प्रभु आपे
0: आदि अंत जो राखन हार तिसे प्रीत न करे गवार
1: जाकी सेवा नाम नित पावे तासे मूड़ा मन नहीं लावे
0: ठाकर सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे
1: जाकी टहल पावे दर के मान तिसे बसारे मुक्त जान
0: सदा सदा हो पूलन हार नानक राखन हार अपार
1: रतन त्यागो डी संग रचे साज छोड़ जोड़ संग बचे
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर माने

0: सतूत पशु की मान सजात, लोक प्रचार करे दिन रात।
1: बाहर पेखन परमल माया, सब सुनाई कछ करे छुपाया।
0: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान।

0: कते जन सहज समात
1: सुनिंदा कैसे मार्ग पावे कर गए
0: कहा बुझारत बूझे डोरा निष्कहिए तो समझे पोरा
1: पद गावे कुंग जतन करे तो भी सुर भंग
0: कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू आउस गवन
1: तार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरे
0: संग सहाय सुहावे न चीत जो बैराई ता सुप्रीत
1: बलवा के ग्रह भीतर बसे नंद खेल माया रंग रसे
0: दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल ना आवे मूढ़े चीत
1: बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार मालोप त्रोह
0: याहू जुगत भी अन्य कई जन्म नानक राख ले हो अपन कर कर्म
1: उठा कर तुम बैर दास जियो पिंड सब तेरी रास
0: मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा में सुख कनेरे
1: कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत
0: सगल समग्री तुमरे

0: राष्ट्रपति दसवा तूले पाछे पावे एक वस्त कर्ण खुट गवावे
1: एक बिना दे दस ले तो मुड़ा को का करे
0: जिसा करसो नहीं चारा ताको की जय सदनम सकारा
1: के मन लगा प्रमिठा सर्व सुखता मन उठा
0: जिस जानी अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया
1: अगना सापनी डेरा से खात पीत बते नंदोला से
0: अपनी अमान का शुभार सावले अज्ञानी मन रोस करे।

0: लपट रहे होते है अंधंधार।
1: बताओ सो जो लावे ने ताको हाथ ना वे के।
0: मनहर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नान के आप ले लाई।
1: मिथ्या तन तन कटम सबाया, मिथ्या हमें ममता माया।
0: मिथ्या राज जोवन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल।
1: मिथ्या रंग संग माया बेखस्ता।
0: मिथ्या त्रो मोह अपमान आप सुप, मिथ्या आप सुपर कर्त गुमान।
1: अस्तर पग साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण।
0: मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने, मिथ्या अत पर दर को ही है।
1: मिथ्या नेत्र पेकत पत्र पाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद।
0: मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है।
1: मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा।
0: बैन बूझे मिथ्या सपे, सफल दे नान हर हर नाम लये।
1: बिरथी सागत के आजा, सच बिना कहो सुचा।
0: बिरथा नाम बिना तनियंद, मुखावता के दुर्गंध।
1: बिन सिमरन दिन रहन बिरथा ब्याए, मेघ बिना जो खेती जाए।
0: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ धाम।
1: तन तन ते जन जय कट बसियो हर नाओ, नानक ता के बल बल जाओ।
0: रहते अवर कशव रकमावत, मानै प्रीत मुखो गण लावत।
1: जानन हार प्रभु परवीन, बार पेख न काऊ पीन।
0: अवर उपदेश है आप न करे, आवत जावत जन में मरे।
1: जिसके अंतर बसे द्रवकार, जिसकी सीख तरे संसार।
0: जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उंजन चरण पराता।
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने।
0: आपे आप आप करत नवेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा।
1: बाप स्यान सगल तेरे, सबको जाने आत्म की रहत।
0: जिस पावे तिसले

0: मनी
1: जय प्रसाद क्षति अमृत खाहे तिष्ठा कर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परम गत पावे
1: जय प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद जय संसुख बसना सिमरो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याय त्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटम भरंडावे तिसे त्याग कत और लभावे
1: जय प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पहर ता का जस गावी जय
0: जय प्रसाद तो सबको माने मुक्ता को जरसन बखाने
1: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
0: जी जब दर के मान पावे नानक पासे ती कर जावे
1: जय प्रसाद रोग कंचन देही लेवला हो तिस राम स्नेही
0: जय प्रसाद रौला रहते मन सुख पावे हर हर जस कहते
1: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकर प्रभु ताके
0: जय प्रसाद तुझको न पहुंचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु चे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भक्त करे
0: जय प्रसाद आपको कन पैरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की
1: जय प्रसाद असब हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलकत ना राख प्रभु प्रभु अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत्य से जय प्रसाद करे पुनवो दान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तो चार बिवारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमर हो सदा नूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह
0: जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद के बिस्मात
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सह जय बसना
0: जय प्रसाद अस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण फले
1: जय प्रसाद परम गत पाव है जय प्रसाद सुख सहज समाव है
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कर लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मर मूर्त ताको जाप
1: जय प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे

0: कृपा ते होए परगास, प्रभु दया ते कमल बिगास।
1: प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए।
0: सर्व निदान प्रभु तेरी मैं आप हो, कछु न किन्हू।

0: साध के संग पूजल होत साध संग मल सगली खोत
1: साध के संग मिटे अभिमान साध के संग पलटे सुज्ञान
0: साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब तन वेरा
1: साध के संग पाए नाम रतन साध के संग ऊपर जतन
0: साध की महिमा भरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी
1: साध के संग अगोचर मिले साध के संग सरा पर भूले
0: साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा
1: साध संग होए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन
0: साध के संग न कतहूं तावे साध संग स्थित मन पावे
1: साध के संग माया ते पिन साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सामीत साधु के संग महापनीत
1: साध संग के सोने बैर साध के संग न बिगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा
1: साध के संग नाही हो ताप साध के संग दिन सब आप
0: आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध पर उवन आई
1: साध के संग न कबहु तावे साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग बस्त गोचर ले है साधु के संग अजर से है
1: साध के संग बचे तन उचे साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ है सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब को ले आधार है साध संग साजन मीत कटम निस्तार है
1: साधु के संग सोतन पावे जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग शोभा सुर देवा
1: साधु के संग पाप लैन साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जनम
1: साध के संग नहीं कछ पार दर्शन भेट तोत निहाल
0: साध के संग कलुखत हरे साध के संग नरक पर हरे
1: साध के संग आवां सहेला साध संग विसरत मेला
0: जो इच्छे सोई फल पावे साध के संग न मिर्था जावे
1: ब्रह्म साध रिद बसे नानक उतरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ
1: साध के संग न मनते बिसरे साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रम मीठा साधु के संग कटका डीठा
1: साध संग पे आज्ञाकारी साध संगत पे ही हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग नानक साध पिटे संजोग
1: साध की महिमा वेद न जाने जेता सुने तेता
0: साध की उपमा तह गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर
1: साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत
0: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच

0: दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुलपमान ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ नानक ज्यों पाव का सह सुपाओ
1: ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन हो प्रकाश जैसे तरी ऊपर आकाश
1: ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान
0: ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा
1: ब्रह्म ज्ञानी से जन पे जन प्रव्याप करे
0: ब्रह्म ज्ञानी सकल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना
1: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी
1: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुक्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान
1: ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
0: ब्रह्म ज्ञानी के गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी परि उपकार महा
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी लतावत बंदा
0: ब्रह्म ज्ञानी के हो सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला
1: ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सकल संसार
0: ब्रह्म ज्ञानी के एक रंग ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग
1: ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम प्रभार
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत
1: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश
1: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगेता
0: ब्रह्म ज्ञानी के हो अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बट भागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को खोज मेसर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेसर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पेट ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाय अखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर
1: ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
1: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सजीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूरन पुरख विधाता
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब उपराध
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार ब्रह्म ज्ञानी आप

0: पास प्रेत मुक्त पाथर को तार
1: कल्याण
0: काहू जो के तेना पाइये धर्म नान तिस मिले जिस लिखे।

0: छोड़ परदेश फरमाए।
1: जिस जिस लावो तिस ते लगना, नानक तेगी जाने करता रचना।
0: कई कोट सिद्ध जती जोगी, कई कोट राजे रस भोगी।
1: कई

0: कोट नरक स्वर्ग निवासी,
1: कई कोट जन्मे जीवे मरे, कई कोट बहुत जुन्नी फिर है,
0: कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काले थक पाए,
1: कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मैं चिंत,
0: जय जय पाणा तै तै राखे, नानक सब कुछ प्रभ के हाथे,
1: कई कोट पै बैरागी, राम नाम संत मिल लागी,
0: कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहंते।

0: जोन परमावे।
1: धन भूमिका जो करे गवान सो मूर्ख अंधा ज्ञान।
0: कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे।

0: संतोख नहीं को राजे सुपन मनोरथ बिरते सब काजे
1: नाम रंग सब सुख होए बड़भागी किसे प्राप्त होए
0: करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप
1: कर्ण

0: कहे के भगवान
1: जिसके दिए रे अकाए बौर न दिस न लागे आए
0: मारे रखे को आप मान के किस नाई हाथ
1: जिसका कंबुश कोए जिसका नाम रकंठ परोए
0: सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे कोए
1: उस मन में कल निरंकार कर्म मेरे सत व्यवहार।

0: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
1: अभी आप जग में आप अनित्य अमृताप
0: अविनाशी नाही किस खंड धारण धारो ब्रह्मांड
1: ताप आप जपाए नानक जाप
0: जन प्रभ जाता सो सुभावंत सगल संसार उदरे तन मंत
1: प्रभ के सेव दुख उदार प्रभ के सेव दुख बसान
0: आपे मिल ले कृपाल गुर का शब पहन हाल
1: अनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करे।

0: सोए करने हार पछाने सोए।
1: प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना।
0: जिस दे उपजे ते समाए समाए ओए सुख निदान।

0: उसको
1: करकशना जमावे हरि हरन
0: नाम
1: हृदय सत्यावे
2: मन बेचे सतगुर के पास दिसेव के कार्य रास
0: सेवा करत होए ने कामी जिसको होत प्राप स्वामी
2: अपनी कृपा जिसे आप पकड़े नाने सो सेवक गुर की मत ले
0: जिस विषय गुर का मन माने सो से परमेश्वर की गत जाने
2: सो से गुर जस रे नाओ अनेक बार गुर को बल जाओ
3: सर्वन दान जय

0: एक सिमर नाम आधार कर्ण कान सो प्रव समर्थ देर कर गयो नाम हर वथ
1: भगवंत संत जना का निर्मल मंत
0: एक आसरा को मन माए सब रोग नानक मिट जाए
1: जिस तन को चार को ठटतावे सो तन है सेवा ते पावे
0: जिसो को निज बाछे मीत सो सो साधु संग प्रीत
1: जिसो बागो करे पलिकानी सासो बाप जार की सरनी
0: अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर उख दलाए
1: शरण दान में हर नाम दान जप नानक दर गए परवान
0: मन पर बोधो आर के नाए दिस्तावते आवे।

0: कुशलाई एक सिमरई कुमन आहे।
1: एक के गुण गाव अनंत मन तन जाप एक भगवंत।
0: एको एक एक आप पूर्ण पूर्यो प्रव्याप
1: अनेक विस्तार एक ते भई एक राध प्राचत गए।

0: नरक में पार, तब नरक सुर को कौन अवतार।
1: जब निर्गुण
0: जब आपे आप अपनी ज्योत रे, तब कवन निडर कवन कदरे। अविनाशी सुख अपने आसन, तय जना मरन को कहा विनाशन।
1: जा
0: अभिगत गोचर प्रवेका, तब चित्र गुप्त को स्पूषित लेखा।

0: मान कौन अभिमान।
1: जय स्वरूप केवल जगदीश, जय चंचल लखनऊ कीश।
0: जय जो सूपी जो संग समावे, तय किसे भूख कम ते पतावे।
1: नानक रावण करने हार, नानक करते का नहीं समार।
0: जब अपनी शोभा अपन संग बनाई, तब कौन माई बा मित्र सत भाई।
1: जय सर्वगुण प्रवीण, तय वेद कतव का को जीना।
0: जब अपने आप आप उतारे।

0: सब बचन सर्वव्यापी राम संग रचन
1: जन जाता रहत सब वचन साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने कर्ण राम हार प्रभ जाने
1: अंतर बसे बार पी होई नानक दर्शन दे सब होई
0: आप साथ किया सब साथ तिस प्राप्ते सगली उत्पात
1: इस पावेता करे विस्तार जिस पावेता एक अंगार
0: अनि कला लखी न जाए जिस पावे से ले मिलाए
1: कवन नेक्ट कम कही है दूर आपे आप भरपूर
0: अंतर गाते से आप जन आए ना तिजन आप जाए
1: सरपूत

0: कारी की नी माया,
1: सबके मन अलपतो रहे, जो किस कहना सो आपे कहे,
0: आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे तले समाए,
1: इससे उसो नहीं बुरा, औरे कहो किने कुछ करा,
0: आप लागा तू जननी की, आपे जाने अपने जी की,
1: आप सातारी सब साच, उत्पोत्र अपन

सगल समगरी तुमरे सूत्र धारी तुम ते होए सो तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा बोलना जी सतनाम वाहिगुरु एको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस टिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै कर नौने दावे ताए सब थाई हुए सहाय दसवां पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार का ध्यान धर के बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाड़ियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख केंडठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां धर्मे सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सिखी केसां श्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विशा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग टल धर्म का जयकार बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची माधा राखा वाहगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब होर गुरद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दे दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माण नेताणिया दे तान न्योटिया दी ओट सच्चे पिता अकाल पुरख धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आप जी का कुटान कुटान शुकराना आप जी ने बख्शिश कीती आप जी की पावन हजूरी विच समूह माइया बीबियां भैणां वल्लों रल मिल के हफ्तावारी दीवान सजाए गए सजे हुए दीवाना विच आप जी की अमृतमई बाणी श्री सुखमणी साहब दे पाठ रब्बी बाणी दे कीर्तन होए समुचियां सीमावां निभाउंदियां होईयां भुल्लां दी खिमा बख्शणी अगे तू समत बख्शणी सतगुर सच्चे पातशाह जी पढ़ी सुनी बाणी दा भाव दाराई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा समूह परिवारां उत्ते आप जी ने मेहर भरिया हथ रखना परिवारां विच आपसी एकता इतफाक प्रेम भरोसे दीआं दातां तंदुरुस्तियां दे रोगता बख्शिश करनियां सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप जी के हजूर कड़ा प्रसाद की देग हाजर दर ते प्रवान होवे अपने इलाही फरमान बख्श के कृतार्थ करो अखर वादा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारज रास करने सही प्यारे मेल जिन्हां मिलिया तेरा नाम चिता वै नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा आग्या पई अकाल की तबै चलायो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की जो प्रभु को मिल बोच है खो शब्द में

0: सारी संगत
1: आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहा जाए कहने वाले तेरे समाए वडे मेरे साहिबा गैर गंभीरा गुण गहीरा कोय ना जाने तेरा किता केवड़ चीरा रहाओ साव सुर तेमल सुर तकमाई साव कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कह ना जाई तेरी तिल वड़ियाई साव सात साव तप सब चंगियाईया सिद्धां पुरखां कियां वड़ियाईया तोदवैन सिधे किरण ना पाईया करम मिले ना ही ठाकर हाईया आखण वाला क्या विचारा सिफती भरे तेरे पंडारा जेह तो दें तिसे क्या चारा नानक सच सवार नारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरे मर जाऊं आखण औखा साचा नाऊं साच नाम की लागे भूख उत भुख